Hello dear friends, welcome to Lamhe program with me your RJ Chetan. माता पिता और बच्चों का रिश्ता जब पारिवारिक जीवन की बात आती है तो हर कोई ये जानने का प्रयास करता है कि माता पिता और बच्चों के बीच का संबंध कैसे आदर्श बन सकता है। पॉजिटिव सकारात्मक पेरेंटिंग तकनीक बच्चों को अच्छे नैतिक मूल्य और नीति नियम के साथ उनका विकास हो सकता है, इस तरह से काम करती है और हर माता पिता का भी यही सपना रहता है। हालांकि ये उपलब्धि इतनी आसान नहीं है और ये जानना महत्वपूर्ण है कि माता पिता के उनके बच्चों के बीच का संबंध दो तरफा सड़क की तरह है। दूसरे शब्दों में ये वास्तव में एक माता पिता और उनके बच्चों के बीच एक साझेदारी है। जैसे विविध रंगों वाले फूलों से एक बगीचा सुंदर दिखाई देता है, इसी तरह अगर माता पिता सिखाते हैं कि कैसे एक मालिक की तरह अपने बच्चे के व्यक्तित्व को पहचाने और उसे पोषण देने में सक्षम बने तो उनका गार्डन सुगंधित हो जाएगा। ये सभी पॉजिटिव पेरेंटिंग की ओर निर्देश करते हैं। जब माता पिता प्रभावी पेरेंटिंग का कौशल विकसित करते हैं तो वे पीढ़ी अंतराल यानी जेनरेशन गैप को मिटाने के सक्षम होते हैं। जब पेरेंट्स इस बात को समझने लगते हैं किन चीजों में मर्यादा रखी जाए, कहां प्रोत्साहित किया जाए और कहां अंकुश रखा जाए, तो उनके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। इस तरह वे अच्छे माता पिता बन सकते हैं। जब लोग ये नहीं जानते कि एक अच्छे पेरेंट्स कैसे बने तो दोनों के बीच दूरियां विकसित होती है। सच्ची समझ के साथ युवा वर्ग भी अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। आज के युवाओं को संपूर्ण समझ प्रदान करने के उद्देश्य के साथ बाल्य और किशोर अवस्था के दोनों वर्गों अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति कर सकते हैं। इस हेतु से शुद्ध प्रेम और समता के साथ उनका कैसे विकास किया जाए, ये मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। नैतिक मूल्यों, अच्छे शिष्टाचार और पॉजिटिव पेरेंटिंग संबंधित उन्होंने उत्कृष्ट समाधान दिए है जो युवावस्था के दौरान भी काम आते हैं। सभी पेरेंट्स के लिए आज के समय अनुसार गाइडेंस, अपने बच्चों की संभाल कैसे करें, माता पिता और बच्चों का संबंध कैसा होना चाहिए, आज इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे और माता पिता के बीच रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम आरजे चेतन के साथ। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। हेल्थी रिलेशनशिप से बनेंगे बच्चों का हेल्थ। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाए इसीलिए सबसे अच्छा स्कूल में भेजने की कोशिश करते हैं। वह ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा स्कूल से ज्ञान के साथ साथ अच्छा व्यवहार भी सीखेंगे। तो हाल ही में हुई एक रिसर्च की मानो तो बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण उसे अच्छे स्कूल में भेजने से ज्यादा जरूरी है। आमतौर पर सभी स्कूल एक जैसे होते हैं और अपने हर छात्र पर बराबर ध्यान देते हैं, लेकिन जिन बच्चों के माता पिता उनका होमवर्क करने में मदद करते हैं, पढ़ाई की अहमियत समझते हैं और बच्चों के सभी स्कूल इवेंट्स अटेंड करते हैं, उनके बच्चे दूसरों बच्चों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बच्चे और उनके पेरेंट्स के बीच का रिश्ता सबसे अच्छा और जरूरी बंधन है। ये रिश्ता बच्चों की पर्सनैलिटी, उसका व्यवहार और पसंद की नींव डालती है। यही से उसका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का विकास होता है। जीवन में दूसरे लोगों से भी अपना रिश्ता अच्छा बनता है। मुश्किल परिस्थितियों में अपनी भावनाओं पर काबू रखना, बच्चे के मानसिक, भावनात्मक और भाषा का विकास होना, बच्चे का आशावादी और आत्मविश्वास से पूर्ण होना, बेहतर सोशल और एकेडमिक परफॉर्मेंस रहना,

आप चाहे कितना भी बिजी हो लेकिन अपने बच्चे के लिए समय जरूर निकालें। जैसे जैसे आपके बच्चे की उम्र बढ़े तो आप अपने पेरेंटिंग स्टाइल को भी बदल दें। बच्चे की उम्र कुछ भी हो उससे हमेशा प्यार से बात करें और गर्मजोशी दिखाएं। उनको बातों बातों में प्यार से ये समझाएं कि आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं और उन्हें आगे का रास्ता दिखाएं। बच्चा जो कुछ भी कहे उसे ध्यान से सुने और उसके प्रति हर परिस्थिति में हमदर्दी दिखाए। कोई भी समस्या हो उसे हल करने में उसकी मदद करें। जब आप अपने बच्चों के साथ कोई भी समस्या को हल करेंगे तो वह आपको देखकर सीखेंगे कि किसी भी मुश्किल हालात में कैसे व्यवहार करना चाहिए। अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर आप उसके करीब आ सकते हैं और उसके जीवन का सबसे अच्छा दोस्त बन सकते हैं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिश्ता सबसे जरूरी है और अच्छा बंधन होता है। यह रिश्ता बच्चों के व्यवहार का पसंद और बच्चों की पर्सनैलिटी पर असर डालता है। यही से बच्चों का भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। माँ बाप और बच्चों के बीच में अगर रिश्ते अच्छे हो तो इसके बहुत फायदे हो सकते हैं। अपने जीवन में दूसरे लोगों के साथ भी एक अच्छा रिश्ता बनाना, बच्चों का भावनात्मक, मानसिक और भाषा का विकास होना, बच्चों का आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना और आशावादी होना, मुश्किल वक्त में और परिस्थिति में अपनी भावनाओं पर काबू रख पाना, बेहतर एकेडमिक और सोशल स्किल्स होना। तो दोस्तों, ये थी बेस्ट पेरेंटिंग के कुछ असर अपने बच्चों पर। होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज वेरी यूजफुल टू ऑल दोस पेरेंट्स। विद दिस वी कंक्लूड टुडेस प्रोग्राम ऑफ लम्हे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी आरजे चेतन से। तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

येसुदास और हेमलता के स्वर में इस मीठे गीत के स्वर रचयिता रविन्द्र जैन जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग हमारे संग्रहालय में है। श्रोताओं, जयंत जी ने इस गीत को सुनने के पहले वादा किया था कि उस रिकॉर्डिंग को हम आपको सुनवाएंगे, तो आइए सुनते हैं गीतकार, गायक और संगीतकार रविन्द्र जैन से सुधांशु शेखर की यह बातचीत।

0: मैंने जब संगीत की शिक्षा लेना आरंभ किया
1: जी
0: तो गायक के तौर पे ही किया, लेकिन गायन के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े नाम थे कि मुझे ये समझ आ गया, जल्दी ही समझ आ गया
1: जी,
0: कि जहाँ तक ये लोग पहुँच चुके हैं वहाँ तक ही जाना मुमकिन नहीं है, तो वहाँ से आगे की तो बात बहुत दूर है। यानी उस्ताद बड़े गुलाम खान साहब थे, अमीर खान साहब थे, जिन दिनों हम सीखा करते थे
1: जी,
0: और खान साहब अब्दुल करीम खान साहब, उनका नाथ जी, यानी जो जो बड़ी हस्तियां उस वक्त सुनने को जिनका हमें गायन मिलता था। तो आज तो ऐसे लोग मैसर ही नहीं है, इसलिए फिर मैंने ये फैसला किया कि कंपोजिशन के क्षेत्र में कदम रखूं। वहाँ भी बड़ा कंपटीशन है, लेकिन वहाँ थोड़ी बहुत अपनी बात कहने की गुंजाइश है
1: जी। लेकिन आपको गीतकार बनने की कैसे सूझी?
0: गीतकार बनना अगर मैं कहूँ कि एक मजबूरी थी, यानी लिटरेचर से तो मुझे बचपन से लगाव है, लेकिन फिल्में जो मैंने गीतकार के रूप में की हैं, उनमें यूं था कि मैं जब बॉम्बे आया तो मेरे पास धुने होती थी, लोक धुने थी, क्लासिकल राग तो थे ही सीखे हुए जाने हुए, लेकिन सुनाने के लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लफ्ज तो चाहिए ना, शब्दों के बिना उनको क्या समझ आएगा, सिर्फ ट्यून्स अगर सुनाते रहे, और मेरे लिए कोई राइटर उस वक्त जब मेरे पास फिल्में नहीं थी तो कौन लिखता, तो टूटे फूटे जो बोल मैं गाता था वही लोगों ने पसंद कर लिए, और उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, बहुत सराहा, और कुछ यूं भी था कि काम जल्दी करके देना होता था
1: जी।
0: तो इन सब बातों के तहत मैं आपके सामने जो कुछ भी हूँ, गीतकार कह लें, शायर कह लें, बस इसी तरह बन गया हूँ।
1: रविंद्र जी, आमतौर पर ऐसा देखते हैं कि आपके गानों में हर दो तीन चार फिल्मों के बाद जो एक फिल्म आती है
0: जी,
1: तो उसका कोई न कोई एक गीत का विषय या राधा होती है, मीरा होती है। जैसे गीत गाता चल का आपका गाना है शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम
0: जी,
1: या फिर राम तेरी गंगा मैली का वो गीत एक राधा एक मीरा, या फिर शाम तेरे कितने नाम में भी एक गीत है, या फिर प्यासा सावन का भी एक गीत है,
0: प्यार का सावन में जी हाँ
1: जी हाँ प्यार का सावन में
0: जी,
1: जिसमें कि उस गाने का विषय जो है राधा या मीरा है
0: जी,
1: और हमेशा आपने एक तुलनात्मक अध्ययन किया है या करने की कोशिश की है राधा और मीरा के बीच में, तो आखिर राधा और मीरा के चरित्र आपको इतने प्रभावित क्यों कर पाए?
0: सबसे पहली बात तो यह है कि मैं ब्रिज भूमि से मेरा ताल्लुक है
1: जी,
0: और वहाँ पे राधा और कृष्ण की आराधना है, तो ये स्वाभाविक है कि कोई भी जब कविता लिखना शुरू करेगा उस क्षेत्र का आदमी, तो उनसे यानी उनकी आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। तो मीरा और राधा का जहाँ तक सवाल है, मुझे कभी कभी यूं लगता है कि ये एक ही रूप के अलग अलग नाम रख दिए गए हैं, क्योंकि आराध्य तो दोनों का एक ही था, अब किसको मिला या किसको नहीं मिला ये तो गूढ़ विषय है इस पे कहना। जैसे मैंने इस गाने में, राज साहब के गाने में कहा है, अंतरे में आपने अगर ध्यान दिया हो कि राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया।
1: जी हाँ जी हाँ।
0: तो प्राप्त करना, उपलब्ध करना, उसका आभास होना, कई बार वो भौतिक रूप में हम मानते हैं, कई बार मानसिक मानते हैं, आध्यात्मिक मानते हैं, तो वो अलग अलग बातें हैं।
1: अच्छा रविंद्र साहब, ऐसा है कि हमारे फिल्मों के साथ ये त्रासदी है कि अगर उस फिल्म के गाने पहले हिट हो जाए तो फिल्म के चलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो ये कहाँ तक सही है और ऐसा क्यों है?
0: संगीत भारतीयों के जीवन में यानी हमारे जन्म से पहले से
1: जी
0: शुरू होता है, ठीक है ना
1: जी,
0: यानी इतना जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, हमारे जीवन के हर पहलू में संगीत है, कण कण में हम कह सकते हैं, और अंत तक संगीत रहता है। तो संगीत का लोकप्रिय होना बहुत स्वाभाविक है, और जिस फिल्म का संगीत जरा भी रिजनेबली अच्छा होता है, सरल होता है, लोगों तक पहुंच जाता है, तो वो लोग चाहते हैं कि फिर उस फिल्म को रिपीट करें, और संगीत मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी फिल्मों को रिपीट करवाने में उसका काफी हाथ है।
1: एक बात फिल्मी संगीत से संबंधित और साथ साथ इस हमारे सवाल का ताल्लुक गीत लेखन से भी है कि आमतौर पे जो आजकल ये होता है कि फिल्म की धुने, गाने की धुने पहले बना दी जाती हैं
0: जी,
1: और उसके बाद गीतकार को कहा जाता है कि भाई आप इसमें शब्दों को फिट कर दीजिए
0: जी,
1: तो इसमें से ऐसा नहीं लगता है कि गीतकार की जो अपनी उड़ान है, शब्दों की जो अपनी उड़ान है, वो एक सीमित दायरे में कैद हो जाती है?
0: डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन पे आप कह रहे हैं, समझिए कि कोई अगर डांस का सीक्वेंस बनाना है, कोई ऐसी फिल्म है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ताल के साथ खेलना है, सुरों के साथ खेलना है, या अलग अलग विविध छंदों में काम करना है, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर गीतकार होते हैं वो एक सेट मीटर होता है हम लोगों को कहने का, ठीक है ना
1: जी,
0: गजलों का भी गीतों का भी, तो उसमें ही ज्यादातर लोग कह के लाते हैं, उसमें विविधता जो है ना वो कम आ पाती है, एक वेरिएशन जो हमें चाहिए होता है वो कई बार नहीं भी मिलता है।
1: अच्छा रविंद्र जी, इन दिनों व्यस्तताएं जो है वो किस क्षेत्र में, साहित्य में, संगीत में?
0: साहित्य तो चूंकि बचपन से मेरे परिवार

0: से मुझे मिला है मेरे पिताजी पंडित श्री इंद्रमणि जैन वैद्य शास्त्री जी, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, और मेरे बड़े भाई साहब श्री धन्य कुमार जी, उन्होंने बहुत साहित्य में काम किया। तो इन लोगों के सानिध्य से साहित्यिक जो संस्कार हैं वो तो जीवित रखने ही हैं, और मुझे उसमें आनंद भी बहुत आता है। तो साहित्य तो मेरे साथ चल ही रहा है, और संगीत की चूंकि शिक्षा ली है और संगीत के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो वो उत्तरदायित्व भी मैं निभाता हूँ। उर्दू की किताब शाया की है कि उसका नाम है उजालों का सिलसिला, उर्दू की गजलें, नज़में, नाज शरीफ, हम इस तरह की चीजें हैं उसमें। हिंदी साहित्य में काम कर रहा हूँ और कुछ तर्जुमे कर रहा हूँ,
1: अनुवाद काम।
0: जी अनुवाद का काम कर रहा हूँ, पर्शियन से सरल उर्दू में।
1: अच्छा, तो आपकी इतनी सारी भाषाएं सीखी हैं?
0: बस ये रुचि है मुझे सारी भाषाओं में। मुझे बंगाली मेरी एक वीकनेस है, चूंकि कलकत्ते से मैंने करियर शुरू किया है
1: जी,
0: तो बंगला पे भी बहुत काम करता हूँ।
1: बंगला पे, उर्दू पे,
0: जी,
1: हिंदी में कर ही रहे हैं।
0: जी जी, हिंदी उर्दू, तो हिंदी उर्दू इसलिए कि वो अलीगढ़ में हिंदी उर्दू का मिला जुला माहौल है, और अलीगढ़ का मैं रहने वाला हूँ, और कलकत्ता काफी वक्त गुजारा है। वो खास तौर से बंगाली लिटरेचर के लिए ही मैं गया था, और बंगला म्यूजिक के लिए गया था।
1: तो आपने किसी दक्षिण भारतीय भाषा पे काम नहीं किया है?
0: म्यूजिक किया है उनके लिए, संगीत किया है।
1: अच्छा, तो
0: ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र भी किया, उससे पहले अभी यशोदा जी के साथ एक मलयालम फिल्म की थी, अभी कुछ गीत कैसेट बनाए हैं मलयालम के।
1: मलयालम भाषा तो आपको आती नहीं,
0: मगर संगीत किसी जबान का मोहताज नहीं है ना, आप जानते हैं उसकी अपनी जबान है,
1: अपनी भाषा होती है।
0: जी,
1: तो आपको उससे कोई कठिनाई नहीं हुई दूसरी भाषा में?
0: नहीं, सिर्फ उसका शाब्दिक अर्थ पता चल जाए और फिल्म का क्या पस मंजर है वो मालूम हो जाए,
1: तो उसके बाद कोई कठिनाई नहीं होती।
0: जी नहीं।
1: रविन्द्र जी, हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप रामायण के कुछ दोहे या चौपाई सुनाते।
0: रामायण में जो मैंने कुछ कहा है वो मैं आपकी खिदमत रखना चाहता हूँ। दोहे चौपाई तो बहुत तुलसी जी ने जो कहे हैं सबने पढ़े हैं और सुने हैं। जिस संदर्भ का गीत मैं गाना चाहता हूँ, मुझे श्री हनुमान जी जब अशोक वाटिका में अपना परिचय देते हैं
1: जी
0: सीता माता को कि वे राम जी ने के भेजे हुए दूत हैं, तो एक गीत वहाँ हमने रखा था।

राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, वे सूर्य वंश के सूर्य।

खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक सुता सीता को

0: जयराम।
1: अभी हम सुन रहे थे जाने माने गीतकार संगीतकार गायक रविंद्र जैन साहब के साथ सुधांशु शेखर की बातचीत। ये खास रिकॉर्डिंग हम आपके लिए विशेष रूप से लेकर के आए थे श्रोताओं।
0: और जयंत जी, रविंद्र जैन जी का एक और बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन जो दूरदर्शन को रहा, एक सीरियल हुआ करता था रामानंद सागर जी का रामायण, उसका संगीत संसार कितना विपुल है वो हम आज भी भूल नहीं पाते हैं। जब जब रामायण देखते हैं रविंद्र जैन जी की स्मृतियां ताजा होने लगती हैं, उनकी आवाज हमारे आसपास जैसे एक बहुत ही आध्यात्मिक संसार रचने लगती है। रविंद्र जैन जी के स्वर में एक बहुत ही हॉन्टिंग मेलेडी है फिल्म अखियों के झरोखों से, उस गीत को सुनते हैं और एक बार फिर याद करते हैं रविंद्र जैन।

0: रविंद्र जैन जी के स्वर में इस सुंदर रचना को सुनने के बाद स्मृतियों की स्वर मंजूषा जो खुल चुकी है
1: जी,
0: उसके अगले कलाकार जो हैं उनके बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके।
1: वाह, याद आए तो दिल मुनव्वर हो, दीद हो जाए तो नजर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके।

0: श्रोताओं, जगजीत सिंह एक अमर आवाज, एक अमर गायक, हिंदुस्तानी गजल को विश्व पटल पर पहुंचा दिया जगजीत सिंह साहब ने, और उनकी आवाज वाकई उनके चाहने वालों के जहन दिल में उसी तरह मुनव्वर है, उसी तरह महकती हुई है जिस तरह ये गजल महक रही थी कुछ देर पहले।
1: वही गजल जो पहले मुशायरों में और शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत की बैठकों तक सीमित थी, उसे आम जनता तक पहुंचाया, पूरे भारत में संगीत प्रेमियों में लोकप्रिय कराया, और वो एक ही नाम है, जगजीत सिंह।
0: जगजीत सिंह साहब की याद आते ही न जाने कितनी गजलें, कितने गीत और कितनी ही उनकी लोक धुनों पर जो आधारित गीत हैं वो याद आने लगते हैं, खासतौर पर उनके गाए हुए कुछ बहुत ही सुंदर पंजाबी गीत।
1: बिल्कुल, और क्यों न हो, क्योंकि मूलतः जगजीत सिंह साहब पंजाब के थे और उनका जन्म श्रीगंगानगर राजस्थान में हुआ था। जगजीत सिंह साहब का वास्तविक नाम जगमोहन सिंह धीमान था
0: जी,
1: और अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि उन्होंने जो संगीत की शिक्षा आरंभ की तो उनके पहले गुरु रहे हैं पंडित छगनलाल शर्मा जी, और उस्ताद जमाल खान साहब से भी आपने संगीत की तालीम हासिल की।
0: बाकायदा शास्त्रीय संगीत सीखने वाले जगजीत सिंह साहब ने जब सुगम संगीत की गजलों को गाना शुरू किया तो कौन कह सकता था कि ये कलाकार अपने श्रोताओं के दिलों पर, अपने चाहने वालों के दिलों पर सदा राज करते रहेंगे। और न केवल गजलें, बल्कि जगजीत सिंह जी ने अपने करियर के उत्तरार्ध में बहुत सुंदर भजन भी गाए हैं जयंत जी, और उनकी गाए सभी भजन आज तक हम सबके हृदयों पर राज करते हैं। भक्ति रस से परिपूर्ण ये भजन सुनते ही मन जैसे आनंद विभोर हो जाता है। श्रोताओं, आज हम महान गायक जगजीत सिंह साहब की खास रिकॉर्डिंग लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। उनके साथ उनकी अहलिया चित्रा सिंह जी भी थी, और ये विविध भारती की खुशकिस्मती थी कि ये मशहूर गजल गायकों की जोड़ी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह एक साथ विविध भारती के स्टूडियोज में पधारी थी, और उनकी उसी रिकॉर्डिंग को हम आज आपकी नजर करते हैं। आइए सुने जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का ये विशेष साक्षात्कार। इस इंटरव्यू को लिया है विजय चौधरी ने।
2: जगजीत भाई और चित्रा जी, एक सवाल जो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा वो ये कि आप गजल गायकी में पहले आए और उसके बाद में आप संगीत निर्देशन के क्षेत्र में आए, तो इन दोनों में आपको कौन सी अपनी शख्सियत ज्यादा प्यारी है और ज्यादा आप किसे इम्पोर्टेंस देते हैं?
3: ये दोनों चीजें कोई अलग नहीं है, क्योंकि संगीत निर्देशन गजल में भी करना पड़ता है
2: जी,
3: फिल्म में भी करना पड़ता है, तो बेसिक जो चीज है वो है म्यूजिक
2: जी।
3: तो मुझे तो दोनों चीजें प्यारी हैं और दोनों चीजें आती हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि गजल ज्यादा प्यारी है या वो ज्यादा प्यारा है, लेकिन क्योंकि गजल से हम ऊपर आए हैं इसलिए
2: जी
3: गजल को हम आगे रखेंगे, संगीत निर्देशन को आप समझ लीजिए कि साइड बिजनेस कह लीजिए।
2: अच्छा अच्छा, ये कहा जाता है कि हमारे भारत में गजलों में जो कॉर्ड का यूज किया है सबसे पहले वो आप ही ने किया, और इसकी वजह क्या है, यानी जो आपने चलन देखा उस वक्त के एतबार से उससे आप प्रभावित हुए या आपने इसकी जरूरत इसको कुछ पहले से अलग दिखाने के लिए समझी?
3: ऐसा है कि देखिए, संगीत जो है म्यूजिक, उसकी तो कोई लैंग्वेज तो कोई है नहीं उसमें, वो जबान सब मुल्कों की एक ही है
2: जी,
3: संगीत की जबान है वो एक ही जबान है
2: जी।
3: अभी आप जिस कॉर्ड जिसको कहते हैं उसमें तीन नोट्स होते हैं, पासा गा या सागा पा
2: जी,
3: वो तीनों एक साथ बजाओ तो उसको कॉर्ड कह देते हैं
2: जी।
3: तो इससे अगर हम पहले धोती पहनते थे, कुर्ते पहनते थे, अब हम पतलून पहनते हैं, सूट पहनते हैं, तो गजल को कॉर्ड क्यों नहीं पहनाया जाए?
2: सही बात,
3: उसको आप क्यों पीछे रखना चाहते हैं?
2: यानी यूं कह लें कि कॉर्ड का कोट क्यों नहीं बनाया
3: जी,
2: यानी जो पाश्चात्य असर है, अब इसके आगे हम चलते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स में ही नहीं, हम देखते हैं कि धुनों में भी भारतीय जमीन पर काबू रखते हुए भी आप लोग कहीं ना कहीं उन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हो चाहे या कंपोजिशन में ऐसी बात हो, उसका असर भी तो
3: थोड़ा सा असर है, फिल्मों में ज्यादा असर है
2: जी
3: वेस्टर्न मेलोडीज का, वेस्टर्न स्टाइल का जो है, लेकिन गजल में मैं समझता हूँ अभी कम है। गजल में सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि वो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, लेकिन मेलोडी में आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कुछ वेस्टर्न कॉम्बिनेशन है।
2: अच्छा, और एक चीज अब खासतौर पर मैं चित्रा जी से ही जानना चाहूंगा कि जबान की जानकारी तो एक जरूरी शर्त है किसी भी तरह के गाने के लिए, लेकिन गजल में कुछ खास सेंसिटिव हुआ करता है मामला, तो इसमें आपका क्योंकि बंगाल से रिश्ता है
4: जी,
2: तो कोई दिक्कत आपको लगी कभी या जगजीत भाई की वजह से वो दिक्कतें आसान होती चली गई?
4: हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप, शुरू शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई, आती ही नहीं थी जुबान बिल्कुल, गा तो जरूर लेती थी, बचपन से गा लेती थी
2: जी,
4: लेकिन वो सुन सुन के गाना, बगैर समझ के गाना, वो और बात होती है। तो फिर जगजीत जी ने काफी हेल्प मदद की इस फील्ड में, और धीरे धीरे समझ आने लगा। और अभी भी वैसे खास तो मुझे आती नहीं लैंग्वेज, सच बात तो ये है।
2: अच्छा,
4: वो तो मेरे बोल से आपको समझ, आप समझ गए होंगे।
2: आप कह रही हैं इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा है, लेकिन लगता तो नहीं है ऐसा।
4: नहीं। मैं लेकिन वैसे एक एक गाना गाने से पहले, एक एक गजल कह लीजिए, इतना जरूर करती हूँ कि उस पर्टिकुलर गजल की जितनी मुश्किलात हो, कितनी भी मुश्किल वर्ड्स हो जिसकी मुझे मीनिंग्स नहीं मालूम, या कुछ भी उसके मतलब हो
2: जी,
4: उस सारी बातें पहले मैं अच्छी तरह से मालूम करके फिर ही गाना शुरू करती हूँ।
2: जी जी। एक इल्जाम अक्सर गाने वालों के ऊपर, गजल गाने वालों पर आजकल आता है कि गीतनुमा गजल ज्यादा आजकल गाई जाती है। किस बात की वजह से लोग ये कहते हैं कि ये गीतनुमा गजल हो गई है? क्या गजल गायकी का भी कोई खास पैटर्न हुआ करता है?
3: ये तो देखिए अपना अपना ढंग है, अपना अपना नॉलेज है। आपको जितना मसाला आता है, जितना मसाला आप डाल सकते हैं जिसमें, उतना डालिए। बाकी रही गीत और गजल, आप एक गजल को एक घंटा भी गा सकते हैं, और एक गजल को आप तीन चार शेर होते हैं, तीन मिनट में खत्म भी हो सकती है
2: जी।
3: उसमें आप एक लाइन को रिपीट कर रहे हैं बार बार, एक ही जगह तान मार रहे हैं बार बार, या सरगम बोल रहे हैं बार बार, तो इस तरह की जो परफॉर्मेंस है उसमें आपकी जो म्यूजिक की नॉलेज है उसको आप इम्पोज कर रहे हैं ऑडियंस के ऊपर। गजल को पीछे छोड़ के आप अपनी नॉलेज को इम्पोज कर रहे हैं। वो करिए, जरूर करिए, लेकिन आजकल फास्ट लाइफ है। पहले हम दिल्ली जाते थे, दो दिन में पहुंचते थे, आज आदमी चाहता है कि दो घंटे में दिल्ली पहुंचे
2: जी,
3: क्योंकि इतना वक्त नहीं है, ऑडियंस के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो एक गजल को बैठ के आधा घंटा एक ही गजल सुनेंगे। वो चाहते हैं कि ढाई घंटे का प्रोग्राम है, उसमें कम से कम 20 गजलें हों
2: जी,
3: डिफरेंट कलाम हो, डिफरेंट शायरों का कलाम हो।
2: अच्छी बात कही आपने, यानी उसकी जगह यहाँ पर दाल में नमक जैसा ज्यादा नहीं।
3: ये नहीं मैं कहता कि नहीं करना चाहिए, वो कहीं कहीं खूबसूरत लगता है, लेकिन उसका ज्यादा जैसे मिर्ची या नमक डाल दो तो फिर वो बुरा लगेगा।
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा चित्रा जी, गजल गाने में जुगलबंदी भी आप ही लोगों से शुरू हुई, और अगर शुरू न भी हुई हो तो मैं समझता हूँ कि मकबूलियत जो है वो आप लोगों से ही, इस जुगलबंदी को मेल फीमेल दोनों एक साथ एक चीज को गाए, तो इसमें आप जो जगजीत भाई बंटवारा करते हैं किसी भी गजल में, तो फीमेल एंगल सामने रहता है उस शेर के पीछे जिसको चित्रा जी गाती हैं, और मेल आपके सामने, या किसी भी गजल को आप बांट सकते ही हैं कि ये?
3: किसी भी गजल को नहीं बांटते हम
2: जी।
3: एक तो जैसे चित्रा जी बोल रहे हैं अभी फीमेल एंगल शेर में हो, दूसरा एक यूनिवर्सल थॉट जिस शेर में हो जो मेल और फीमेल दोनों पे जाता हो, तो वो मैं अक्सर इनसे गवाता हूँ।
2: अच्छा, इसके कुछ एडवांटेजेस आपको खास दिखाई दिए दोनों साथ में अगर कोई चीज गाते हैं तो ऑडियंस के ऊपर?
3: हाँ, एक तो देखिए मोनोटोनी टूट जाती है
2: जी,
3: अगर एक ही आवाज आप सुन रहे हैं तीन घंटे कान में तो वो थोड़ी देर के बाद मोनोटोनस लगती है। तो एक गजल मैंने गाई, उसके बाद एक इन्होंने गाई, तो एक वेरिएशन जो है ना वो कानों को भी मिलता है, क्योंकि इसकी ऑडियंस भी बहुत वाइड हो गई है गजल की, आपको तो मालूम है।
2: जी हाँ जी।
3: पहले तो लोग घरों में ही गजल सुनते थे, या कभी कभार कभी गजल का प्रोग्राम होता था स्टेज पे, उसमें भी 200 या 300 आदमी। अभी जो गजल के प्रोग्राम होते हैं, हम लंदन में गए थे अल्बर्ट हॉल में, तो 6000 आदमी वहाँ हॉल भरा हुआ था। उसके बाद सन सिटी में गए, 7000 आदमी हॉल भरा हुआ। या इंडिया में भी श्री फोर्ट ऑडिटोरियम दिल्ली में 2500 आदमी, 2000 आदमी, तो इस तरह की ऑडियंस। चंडीगढ़ गए, वहाँ 14000 आदमी रोज गार्डन में, तो गजल सुनने आया। वो पीछे 14000 में कुछ सुनने वाले हैं, कुछ ऐसे ही आ गए हैं, कुछ तमाशा देखने आए हैं, तो वहाँ पे सिर्फ गजल नहीं रहती, वहाँ फिर कई कुछ और भी करना पड़ता है एंटरटेन करने के लिए।
2: जी हाँ जी। अच्छा, गजल के साथ में जब लोग तालियां बजाते हैं ताल के अंदर, तो कैसा लगता है? यानी
3: देखिए वो एक स्टेज होल्ड करने का जो है तरकीब है, तरकीब यह आपकी कि वो पार्टिसिपेशन उनकी हो जाती है ऑडियंस की। अगर ऑडियंस की पार्टिसिपेशन शुरू हो गई है, इसका मतलब आपका प्रोग्राम जम जाएगा।
0: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की ये विशेष रिकॉर्डिंग हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे विजय चौधरी जी। और श्रोताओं, ये हमारे संग्रहालय की खास रिकॉर्डिंग थी। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। जी हाँ, आइए सुनते हैं इस लाफानी गजल को जिसे लिखा है

0: सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो।
1: सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो।
0: उर्दू अदब के एक महान शायर निदा फाजली, 12 अक्टूबर उनका जन्मदिन हुआ करता है और आज विविधा में हम निदा फाजली साहब को बहुत दिल से याद कर रहे हैं। उनकी एक खास रिकॉर्डिंग लेकर भी आज हम हाजिर हुए हैं श्रोताओं, जिसको हम थोड़ी ही देर बाद आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उसके पहले एक बात जयंत जी आपसे शेयर करना चाहते हैं।
1: मनीषा जी, मक्तिदा हसन निदा फाजली यानी हम सबके चहेते निदा फाजली साहब, इनके बारे में एक वाकया बताया जाता है कि जब वो किशोर वयन थे
0: जी,
1: एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे, मंदिर में भजन चल रहा था और वो सूरदास का पद था जिसमें राधा अपने सखियों के साथ अपना दुख बांट रही है कृष्ण से बिछोह के बाद। उस रचना ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि तब से वो कविता की ओर मुड़ गए।
0: क्या बात है, एक शायर के दिल को ये बात बहुत गहरी लगी। और देखिए, यही होता है एक शायर का, एक कवि का दिल। इस महान शायर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग श्रोताओं हमने अपने संग्रहालय में संग्रहित करके रखी है, जिसके कुछ अंश हम आज आपको अपने इस प्रोग्राम में सुनवा रहे हैं। निदा फाजली साहब से बातचीत की है अहमद वसी साहब ने, जो विविध भारती के पूर्व उद्घोषक भी रह चुके हैं और स्वयं भी एक शायर थे। तो आइए सुनते हैं मशहूर शायर निदा फाजली से अहमद वसी साहब की ये खास बातचीत और उसके संपादित अंश।
2: निदा साहब, इस वक्त मुझे रघुपति साहब फराग गोरखपुरी का एक शेर याद आ रहा है कि दिल को तेरी तलाश है वादिये कायनात में, तुझको कहाँ वो दे सदा, तुझको कहाँ सदा न दे। और वादिये कायनात की तरह फैला हुआ है हमारे इस प्रोग्राम का दामन और मैं इस पसोपेश में हूँ, इस उलझन में हूँ कि आपको कहाँ से आवाज दूँ और आपसे क्या क्या सवाल करूँ और आपसे क्या क्या पूछूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम की वसत का तकाजा ये है कि आप खुद अपने बारे में बताएं, अपने बचपन के बारे में, अपनी यादों के बारे में, अपने अहबाब के बारे में।
3: एक साथ बहुत सारे सवालात, उन सारे सवालों का जवाब एक शेर। अब जहाँ भी हैं वहीं तक लिखो रुदादे सफर, हम तो निकले थे कहीं और ही जाने के लिए। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ, मैं अपने घर में तीसरा बच्चा होने वाला था। मेरी वालिदा एक हादसे का शिकार हो गई, मकान की मरम्मत हो रही थी दिल्ली में और वो छत से मुझे 3 महीने का रखे हुए नीचे गिरने वाली थी। मेरे मामू ने दोनों हाथों में उन्हें थाम लिया, वो बेहोश हो गई और मैं वक्त से पहले इस कायनात में चला आया। जब चला आया बाद में महसूस हुआ, गालिब का शेर याद आया कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। मैंने अपने बचपन को अभी तक अपने साथ महफूज रखा है, बीती

0: कहानियों का जिक्र होता है तो हमारा ध्यान, हमारा ख्याल मुतवज्जी होता है फिल्मों की तरफ। चूंकि ये फिल्मी सिलसिला ऐसा है कि हर शायर, हर गीतकार, हर लिखने वाला चाहता है कि इनसे वाबस्ता हो, इससे फिल्मों से वाबस्ता हो, और आपकी वाबस्तगी भी इसी फिल्मी दुनिया से है। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप अपनी जवानी में, अपने बचपन में या पिछले दिनों में आप किस तरह की फिल्में देखते थे, पसंद करते थे, और फिर किस तरह के गीत आपको पसंद थे, या कौन शायर, कौन गीतकार, किस किस्म के गीत आपकी प्रेरणा का स्रोत बने?
1: देखिए साहब, बिहार में पटना आदिमाबाद के एक शायर हुए हैं शाद आदिमाबादी। उनकी एक लाइन है कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि च्वाइस का इख्तियार जिंदगी में होता नहीं है। जहाँ पैदा हो गए वो आपका परिवार, उस परिवार की जो भाषा वो आपकी भाषा, वो परिवार जिस मोहल्ले में वो आपका मोहल्ला, वो मोहल्ला जिस नगर में वो आपका नगर। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। जब एक घर छीना गया तो घर की तलाश में पूरे देश में भटकता रहा। ये भी बेवकूफी थी, घर चला गया था कराची और मैं उसे ढूंढ रहा था हिंदुस्तान में। मालूम पड़ा एक पड़ाव बम्बई आया। उस जमाने में धर्मवीर भारती यहाँ पर थे, उनके धर्मयुग में लिखना शुरू कर दिया, फिर बिलिट्स था उसमें लिखना शुरू कर दिया। मालूम पड़ा कि एक दिन बेघर के एक शख्स जिसका नाम निदा फाजली था, उसके लिए मैसेज रखी होती थी हर जगह जहां वो काम कर रहा था। थोड़ा थोड़ा कहीं धर्मयुग में मैसेज पड़ी हुई है, कहीं बिलिट में पड़ी हुई है, कहीं किसी रेडियो स्टेशन पे पड़ी हुई है। और वो मैसेज ये थी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप मुझसे मिलिए, आपसे कुछ काम लेना है, कमाल अमरोही। मैंने सोचा कि मेरा कमाल अमरोही से क्या काम हो सकता है। फिर भी क्योंकि स्ट्रगल हर रोज भागते हुए सूरज का पीछा करता है और सूरज उससे आंख मिचोली करता है, फिर भी वो सूरज से पर अपने विश्वास को खत्म नहीं करता। तो मैं कमाल अमरोही के चला गया। कमाल साहब मिले 2 बजे के करीब, और वो स्टाइलिश आदमी थे कमाल साहब। एक लफ्ज भी अंग्रेजी का बोलते नहीं थे, और वो भाषा बोलते थे जो आज से 50 साल पहले अमरोहा में बोली जाती थी। मैं बम्बई आकर उस भाषा को भूल गया था। मैंने कहा कमाल साहब आदाब, मेरा नाम निदा फाजली है, तशरीफ रखिए। मैंने आपको इसलिए याद फरमाया, उनका स्टाइल है, मैंने आपको इसलिए याद फरमाया कि मुझे एक मुकम्मल शायर की जरूरत है। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ, और ये इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया कि आप मुझे मुकम्मल शायर समझ रहे हैं। कि जी, मुझे आपसे कुछ नगमात तहरीर करवाने हैं। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ साहब, आप मुझे बताइए कि क्या गाना है, कैसा लिखना है। लेकिन इससे पहले कि आप गाना लिखें, मैं एक बात जाहिर कर देना चाहता हूं कि इल्मी शायरी अलग होती है, फिल्मी शायरी अलग। और फिल्मी शायरी लिखने के लिए आपको मेरे मिजाज की शिनाख्त बहुत जरूरी है। जानिसार अख्तर, मेरे मिजाज को पहचान गए थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। मैंने कहा मैं ये शर्त तो पूरी नहीं करने वाला, कोशिश करूंगा कि आपकी सिचुएशन पर कुछ लिखूं। तो वो अपनी सिचुएशन जो मुझे सुनाई उन्होंने, तो वो जुबान में सुनाई कि मैं भी थोड़ी देर के लिए हिल गया। कह रहे हमारी दास्तान उस मुकाम पर आ गई जहां मलका आलिया रजिया सुल्तान यानी हेमा मालिनी सियाह लिबास में मलबूज खरामा खरामा चली आ रही हैं, जिसे देखकर हमारा आलय अक्कासी खैर मकदम के लिए आगे बढ़ा। मैं थोड़ी देर के लिए हिल गया। उनके असिस्टेंट ने बाद में कहा इसका मतलब ये है कि हेमा मालिनी सफेद घोड़े पर काले लिबास पहने हुए आ रही हैं और आलय अक्कासी यानी कैमरा उनकी तरफ मूव हो रहा है। तो मैंने लास्ट 2 सॉन्ग्स आई रोट फॉर दैट फिल्म, लेकिन उस फिल्म के बनने में इतना टाइम लगा कि कमाल साहब की गुडविल जो है उसने मुझे इंडस्ट्री में मशहूर कर दिया कि कोई ऐसा आदमी है जिससे कमाल अमरोही गाने लिखवा रहे हैं। तो जाहिर है कि नॉट निदा फाजली बट बिकॉज कमाल अमरोही इज मेकिंग हिम राइट। तो फिर मैं राज कपूर से लेकर यश चोपड़ा से लेकर इस्माइल शरीफ तक मोर और लेस विद एवरी म्यूजिक डायरेक्टर आई वर्क्ड। मैं जिस युग में आया, जन्म लिया, वो युग पिछले युगों से अलग था। हालांकि मुझसे पहले गालिब का एक मशहूर शेर है कि बुलबुल के कारोबार पे है खंदा हाय गुल, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। मैं जिस जमाने में आया उनमें लड़कियां काफी चतुर हो चुकी थी। वो आपके चेहरा देखने के बाद آپ کے چہرے پر لکھے ہوئے بینک بیلنس کو بھی دیکھنا چاہتی تھی. بہت سے چہرے اچھے لگے, لیکن میں جو فاصلہ طے کر رہا تھا وہ ایک روٹی سے دوسری روٹی کا تھا. ندیر اکبر آبادی نے کہا تھا کہ ہم کو تو چاند میں نظر آتی ہیں روٹیاں. تو میری جو افیئرس رہے وہ یک طرفہ رہے. میں نے چاہا, مجھے نہیں چاہا گیا. میں نے انتظار کیا, کسی نے میرا انتظار نہیں کیا. میں انہیں قصوروار بھی نہیں ٹھہرا, کیونکہ پڑھی لکھی باہوش ہر لڑکی کو چہرے کے ساتھ بینک بیلنس اور جیب کے پیسے بھی دیکھنا چاہیے. اور اس وقت میرے پاس نہ فیوچر تھا نہ وقت تھا. میری تلاش روٹی کی تھی, دل کو تلاش محبت کی تھی. دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اور وقت نکلے جا رہے تھے. تو کالج میں مجھے یاد ہے ایک لڑکی تھی, میں ایم اے کر رہا تھا انگریزی میں, تو وہ 45 کے اینگل میں بیٹھتی تھی جہاں میں بیٹھتا. پھر راستے میں جب باہر کالج مطلب کلاس روم کے باہر گارڈن تھا, اس گارڈن میں جب وہ آتی ہے تو گارڈن مکمل ہو جاتا ہے. وہ جدھر سے گزرتی تھی معلوم پڑتا تھا خود سنورتی تھی, بلکہ پورے ماحول کو سنوار دیتی تھی. میں نے اس زمانے میں ایک نظم بھی کہی تھی, وہ پھول پھول نظر سانولی سی ایک لڑکی جو روز میری گلی سے گزر کے جاتی ہے, سنا ہے وہ کسی لڑکے سے پیار کرتی ہے, سنا ہے وہ کسی لڑکے سے پیار کرتی ہے, بہار ہو کے تلاش بہار کرتی ہے. نہ کوئی میل نہ کوئی لگاؤ ہے, لیکن نہ جانے کیوں بس اسی وقت جب وہ آتی ہے کچھ انتظار کی عادت سی ہو گئی ہے مجھے, ایک اجنبی کی ضرورت سی ہو گئی ہے مجھے. میرے ورانڈے کے آگے یہ پھوس کا چھپر, گلی کے موڑ پہ اکھڑا ہوا سا ایک پتھر, یہ ایک جھکتی ہوئی بدنما سی نیم کی شاخ اور اس پہ جنگلی کبوتر کے گھونسلے کا نشان, یہ ساری چیزیں کہ جیسے مجھ ہی میں شامل ہیں, میرے دکھوں میں میری ہر خوشی میں شامل ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی یوں ہی گزرتی رہے, ادا و ناز سے لڑکے کو پیار کرتی رہے. تو اسے دیکھ کر صبح بھی اچھی لگتی تھی, اس کی خاموشی سے دن بھی جاگتا تھا, بے مطلب اس کا انتظار کرتے تھے. ایک دن آیا کالج میں, میں تو اچانک

किशोर कुमार की आवाज में हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, मैं सुंदर हूँ इस फिल्म से। मन्ना डे की आवाज फिल्म मेरा नाम जोकर नीरज की रचना है, शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: ए भाई दर देख के।

ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है घोड़ा जो पैसा है घोड़ा जो किस्मत है तेरे पैर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: है चूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
3: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3

0: तीन बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज दो सखियाँ तीन बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

शब्बीर कुमार की आवाज में एसएच बिहारी की रचना थी ये तेरी मेहरबानी। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सर्वधिकिया। असद भोपाली का लिखा दो गाना आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजों में फिल्म मैंने प्यार किया।

0: शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें साझा करेंगे, सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं था कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल और इस गीत के संगीतकार थे राम लक्ष्मण।
1: वो बताएंगे फिल्म की

0: किशोर कुमार की आवाज में बनफूल फिल्म का ये गीत आपने सुना। आनंद बख्शी की रचना थी, तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

लता मंगेशकर का गाया, शैलेंद्र का लिखा, सचिन देव बर्मन का सर्वबद्ध किया गीत फिल्म गाइड से आप सुन रहे थे यादों की महफिल। जी प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है।

दोस्तों नमस्कार। किसी कोने पर, घर के किसी कोने पर सजा रेडियो विविध भारती का सुरीला सफर कार्यक्रम आ चुका है आपके रेडियो सेट तक। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुरीला सफर में। आज की जो इबारत है दीवार, उसमें कुछ दीवारें बातें करती हैं और ये इबारत जो हमने फेसबुक पर डाली है वो एक बार आपके लिए पढ़े देते हैं श्रोताओं। ये दरो दीवारें जिनमें एक उम्र की कहानी होती है, कभी साथ बैठकर घुल मिलकर इन्हीं दीवारों के साए जिंदगी परवान चढ़ी। घर की ये दीवारें जिनसे कभी धूप तो कभी चांदनी को उतरते देखा था, चंदन की खुशबू की तरह आज भी आंखों में बसे हैं वो दिन वो रातें। कभी जुड़ते कभी टूटते रिश्तों की चश्मदीद हैं ये दीवारें। शादी ब्याह की धूम में साथ रत जगा भी करते देखा है इन दीवारों को। कभी प्यार कभी रंजो गम, कभी ढोल ताशे तो कभी शहनाइयों की धुन इन्हीं दीवारों में सिमट जाती थी। बचपन में जिन दीवारों पर चित्र बना देते थे, कभी जिनके सहारे बैठकर पढ़ाई किया करते थे, कभी इनके साथ छुपा छुपी का खेल भी खेला। दीवारों से बने घर, उसी दर को भुला पाना आसान नहीं। माँ बाबा के घर से पिया के घर तक जाने के सफर की राजदार हैं ये दीवारें। सच सच बता ए दिल, क्या उसी दर को ढूंढती हैं आज भी ये आंखें जिनसे वादा था कभी लौट कर आने का। साथियों, हम जहां हैं आज या हमारा शुरुआती जीवन जिस घर में बीता, उनकी दरों दीवारों में आज भी समय की स्मृतियां हैं जो कहती तो कुछ नहीं लेकिन उनकी पुकार को हम सुन तो सकते ही हैं। दीवारों से मिलकर घर बनता है, कभी सीमेंट ईंट से तो कभी मिट्टी की दीवारें, लेकिन रिश्तों का सौंधापन साथ बैठकर रसोई में खाना खाना और दीवारों के सहारे ऊपर जाती वो छत। हम तो चले आए लेकिन यादें वहीं रह गईं। चलिए उन्हीं दीवारों के साए चलते हैं जिनकी मरम्मत का भी शायद समय आज के व्यस्त जीवन में किसी के पास नहीं। वैसे दोनों दीवारों को दुरुस्त करने की कहां तक जरूरत है, एक जो मन में है और दूसरी जो घर में इंतजार करती है। कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai और जुड़िए हमारे इस कार्यक्रम से जिसका नाम है सुरीला सफर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

घर की दरों दीवारों की तरफ अगर लौटिए श्रोताओं, उनमें कान लगाकर सुनिए तो शायद यही दुआएं देती हैं दीवारें कि तुमको हमारी उम्र लग जाए। और तमाम जो बातें दीवारों के रहते जो घरों में होती हैं, यानी कभी अपने साथियों के साथ खेलना, कभी बिताया हुआ बचपन, कभी वहां की गई पढ़ाइयां, तो बहुत सारी यादें हैं। और हमारे श्रोता जो हैं बहुत सारी यादें भी अपनी साझा कर रहे हैं, तो इन यादों को भी आप बांटते चलें कार्यक्रम में, तो क्या ही बात है। आई मिलन की बेला इस फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज में, और सायरा बानो पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत मात्र एक घर की दास्तान नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की भावना है जो अपने मूल निवास, अपनी जड़ों और अपनों से दूर हो चुका है। भौतिक रूप से भले ही इंसान आगे बढ़ जाए, लेकिन उसका एक हिस्सा हमेशा उस घर में छूट जाता है जहां उसका बचपन और उसका असली वजूद परवान चढ़ा था। एक और श्रोता ने लिखती हैं, घर छूट सकता है मगर घर की यादें कभी नहीं छूटती। कुछ दीवारें उम्र भर हमारे भीतर खड़ी रहती हैं, याद बनकर, अपनापन बनकर और माता पिता के आंगन की खुशबू बनकर। इन दीवारों ने घर में आती धूप और चांदनी के साथ साथ रिश्तों के बदलते रंग भी देखे हैं। प्यार रूठना मनाना, कहीं शहनाई की गूंज और कहीं विदाई की नमाखें। और इन्होंने ससुराल की भी बातें लिखी हैं। एक और हमारी श्रोता लिखती हैं कि यादों की दीवारों पर आज भी हैं बचपन के वो निशान, जहां बेफिक्र होकर पाया था मैंने मान। भले ही अब दूर हूं मैं मेरे नए घर संसार में, पर जुड़ा मेरा दिल है मायके के प्यार में। ईंट पत्थर से बनता हर मकान है, जहां प्रेम बसी वो घर महान है। थक हार कर जब शाम ढलती है, घर की याद दिल में मचलती है। तो कितनी ही प्यारी बात इन्होंने लिखी है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि घर की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं होती, बल्कि हमारी जिंदगी के हर सुख दुख, हंसी आंसुओं और बदलते रिश्तों की चश्मदीद गवाह होती हैं। आज विविध भारती के सुरीला सफर कार्यक्रम में शायद यही बात है। और जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। अब एक गीत आपको सुनवाते हैं, उसके कलाकार और गीतकार आपको बताने हैं।

नूतन और देवानंद पर फिल्म आएगा ये गीत था, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है और इस गीत के रचनाकार हसरत जयपुरी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो पूरी इबारत चलचित्र की भांति मस्तिष्क पटल पर अंकित हो गई। बुलाई नहीं भूलती वो बचपन के घर की दीवारें, मात्र 10 फीट ऊंची दीवारें और उस पर टीन का शेड। घर की इसी एक दीवार पर 2 से 20 तक पहाड़े लिखे हुए थे, यानी टेबल्स की बात कर रहे हैं ये, जिन्हें रोज याद करता था। इसके विपरीत दीवार में एक छोटी ताक थी जिस पर लैम्प केरोसिन तेल से भरी चिमनी भी रखी रहती थी जिसे शाम को जलाया जाता था। इस रोशनी में शाम को क्लास होमवर्क के साथ पढ़ाई होती थी। इससे आगे वाले छोटे कमरे में अंगीठी पर खाना बनाया जाता था। बचपन के घर की दीवारें भुलाई नहीं भूलती ये दीवारें, बचपन की कितनी यादें अपने आप में समेटी हुई हैं। वक्त के साथ अपने आप यादों के झरोकों से सारी दास्तां बयान कर देती हैं लेकिन बोलती कुछ भी नहीं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि अब उस घर में हम नहीं रहते, ताला पड़ा हुआ है। यदाकदा समय मिलने पर वहां चला जाता हूं, कुछ समय वहां अकेला बिताता हूं। यही मेरा बचपन बीता, स्तब्ध और मूक दीवारें जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हैं और बचपन की घटनाओं को चलचित्र की भांति मस्तिष्क में अंकित कर जाती हैं। बचपन के बाद यही जवान हुआ, विवाह भी यहीं से हुआ, पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति भी यहीं से हुई, नौकरी वगैरह की भी बातें इन्होंने लिखी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है कि यादों के दरख्त बन चुकी दहलीज और दीवारों के दर्द बयां करती दमदार इबारत, जिन दहलीज दीवारों के दरमियान कभी बचपन दम भरता था, आज मूक साक्षी को दर्शक बन हसरत भरी नजरों से निहार रहे हैं। दूरियां दीवार ने नहीं दिलों ने बनाई है, दीवार नहीं दिल की दरारों से लुप्त हो चुकी उन अतीत रिश्तों खुशियों को आज भी दिल ढूंढता है, मगर दर्द दिल की ये हसरत दिल में ही दफन हो कराह उठती है। यादों के दर्पण में स्वयं को ढूंढने का ये सफर का बेसब्री और बेकरारी से इंतजार रहेगा। एक जो चिलमन होती है श्रोताओ, उसे भी हम एक हल्की सी दीवार मान सकते हैं जो दो लोगों के बीच होती है। यही गीत है और ये गीत किन पर फिल्माया गया ये आपको बताना है। और साथ ही जो हमने आपसे सवाल किए थे कि कुछ यादें जो दीवारों से वाबस्ता हैं आपके पढ़ने की पढ़ाने की, या फिर किसी एक ताक पर रेडियो तो क्या रखा होता था और उसमें विविध भारती से कुछ आवाजें आती थी क्या,

हमारे श्रोताओं ने पूरी एक तरह से कह सकते हैं कि डिटेल ही लिख दी है इस गीत की। महबूब की मेहंदी फिल्म का ये गीत है और लोकप्रिय और रोमांटिक गाना है ये। एक श्रोता ने लिखा है, आनंद बख्शी के बोल हैं और ये गाना एक प्रेमी की उस मीठी बेताबी को दर्शाता है जो अपनी शर्मीली प्रेमिका के चेहरे से हटते हुए पर्दे और बिखरी जुल्फों का दीदार करने के लिए बेचैन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मिट्टी खपरेल वाला वो घर जहां मेरा जन्म हुआ आज भी गांव में सलामत है, साल में एक दो बार जाता हूं। ये मैं पूछने भी वाली थी श्रोताओं आपसे कि मिट्टी के जो घर होते हैं उनकी अगर कोई यादें आपके साथ हों, यानी गांव के घर, गांव में खासकर देखा जाता था पहले और अब तो वैसे सब जगह ईंट और सीमेंट की ही पक्की दीवारें हुआ करती हैं, लेकिन आज भी देखने को मिलता है घर भले ही मिट्टी की दीवारों का हो लेकिन जो दिल की दीवारें होती थी वो बड़ी मजबूत होती थी। तो ऐसे घरों की जो यादें हैं वो आप जरूर हमसे ताजा करें। और क्या कभी आप अपने घरों में यानी पुराने घर में कभी लौट कर जाते हैं? अगर जाते हैं तो ये भी हमें जरूर बताएं। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आजकल तो दीवारों पर कुछ ना नजर आए तो अच्छा लगता है। बच्चों को पहले हम न जाने क्या क्या हाथों से बनाते और लगा देते थे, कई तोरण बनाए हर साल दिवाली पर, कुछ नया सा तोरण अब सब बाजार में मिल जाता है पर उसमें वो खुशबू नहीं होती और नहीं वो प्यार जो खुद बनाकर लगाने में मिलता है, वो खुशी कहीं खो सी गई है। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि जो गीत आज के हैं उनके बारे में लिखा है कि बेमिसाल गीत हो सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन में जब छुपन छुपाई का खेल खेलते थे तब दीवार की तरफ दोनों हाथों के बीच छुप कर मतलब सब छुप जाते होंगे और कितनी प्यारी यादें इन दीवारों से जुड़ी हैं, आज वो सब तो नहीं पर हाँ कभी अपनी तो लगती हैं ये दीवारें। जी हाँ, जरूर होती हैं अपनी। एक और श्रोता लिखते हैं कि कुछ दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनती, उनमें हमारी पूरी जिंदगी बसती है, बचपन की शरारतें, माँ बाबा की आवाजें, हंसी आंसू, त्योहार और न जाने कितनी यादें। घर छूट जाता है मगर उन दीवारों में बसा बचपन दिल से कभी जाता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे खूबसूरत संदेश हमारे पास आए हैं और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप तक इन बातों को पहुंचाया जाए। वैसे शादी ब्याह की भी बड़ी सारी यादें होती हैं, वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। संगीतकार आपको बताने हैं श्रोताओं और कलाकार

देवर फिल्म का ये गीत था शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि दीवारें भी कितनी खास होती हैं, इन्हीं के बीच हमारा बचपन हंसता है, रिश्ते पलते हैं और जाने कितनी यादें चुपचाप बस जाती हैं, घर से दूर हो जाएं तो भी उन दीवारों में बसा अपना संसार दिल से कहां दूर होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी लगता है बिछड़ना सिर्फ इंसानों से नहीं जगहों से भी होता है जहां हमने अपने हिस्से का समय जिया है। घर की सीढ़ी, छत का वो कोना, आंगन की दीवार, बरामदे की वो कुर्सी और लेस लगी वो कवर कुर्सी, खिड़की, ये सभी हमारे भीतर बस जाते हैं। आप श्रोताओं, आपने बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। कुछ एक घर का कोना होता है जिसमें रेडियो की भी बड़ी सारी यादें होती हैं, क्या आप

के घर में भी रेडियो था, क्योंकि उस समय रेडियो बड़ा खास हुआ करता था और साइकिलें भी बड़ी खास होती थी, जो लोग एक दूसरे को दिया लिया भी करते थे। ऐसे कुछ यादें हो तो आप ताजा कीजिए। लिखते हैं आगे कि दीवार बरामदे की वो कुर्सी और लेस लगी वो कवर कुर्सी, खिड़की, ये सभी हमारे भीतर बस जाते हैं। जब हम उस जगह पर लौटते हैं तो लगता है कि ये सभी हमारा राज जानते हैं और हमें हमारी राह दिखाते हैं। होगा शायद ये कुछ बताने के लिए, कुछ बिसी यादों को जानने समझने के लिए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं अपने घर बिहार आज भी बड़ी शिद्दत से जाता हूँ। कुछ ज्यादा दिन हो जाते हैं तो ऐसा लगने लगता है जैसे आंगन हमसे रूठ गया हो और पूछ रहा हो इस बार इतने ज्यादा दिन क्यों लगा दिए। जब वहां पहुंचता हूं तो लगता है दीवारें मुस्कुराने लगी हों, आंगन में बहारें थम सी गई हों। और इनका और भी संदेश आप तक पहुंचाएंगे श्रोताओं, सुनाते हैं ये गीत।

घर की दीवारों किस्साए आज गीत हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में। श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे पालकी फिल्म से। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक फरमाया है, राजेंद्र कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गीत था। सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की पुरकशिश आवाजें थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि दीवारें सदियों से न जाने कितने राज, न जाने कितने रहस्य अपने में समाये खड़ी हैं। अचल और अस्थिर दीवारें तो कमोवेश एक जैसी होती हैं, बस उनको देखने का नजरिया अलग अलग होता है। अतीत को छोड़ देना बहुत आसान होता है, मगर दीवारें सब जानती हैं। दुनिया की हर दीवार पर मन की व्याख्या अंकित है, बस समय पर हम उसे पढ़ नहीं पाते। चुप्पियां और दीवारों पर ठहरे हुए गहरे निशान प्रतिध्वनि को जन्म देते हैं। जहां सब समा जाता है वो अंततः मौन हो जाता है, इसलिए दीवारें भी मौन है। कुछ दीवारें ऐसी होती हैं श्रोताओं कि जिन्हें अक्सर लोग गिरा दिया करते हैं, यानी दिल की दीवारें। जी हाँ, इन्हें गिरा देना ही अच्छा होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि दीवारें और छत आपस में जुड़कर मकान बनाते हैं और पारिवारिक सदस्यों के आपसी जुड़ाव से मकान घर बन जाता है। जहां हमारी संस्कृति और संस्कार इसी घर और परिवार के सदस्यों की पहचान बन जाते हैं। वैसे तो घर से जुड़ी हर चीज से हमारा जुड़ाव होता है, लेकिन कोई एक दीवार ऐसी होती है जो दिल से ज्यादा जुड़ जाया करती है। किसी दीवार में झरोखा, अलमारी, आला या कारनेस हुआ करता था। किसी एक दीवार में दर्पण होता था जिसमें हम अपने आप को से बातें किया करते थे, जो कि उस दीवार से हमारा जुड़ाव एक खास वजह से हो सकता है। घर की दीवारें आधार होती हैं और हमारे मन में पनपी शंका या गलतफहमी की दीवारें संबंध को तोड़ देती हैं। कुछ एक घर का कोना होता है श्रोताओं जो हमें बड़ा खास तौर से अच्छा लगता है। ऐसी कोई जगह थी घर के अंदर जहां आप खासकर बैठने में बड़े सुकून की अनुभूति करते थे? एक तो ये सवाल आपको बताना है, और आज विश्व पशु दिवस भी है तो आप बताएं, क्योंकि घरों में महानगरों की बात तो मैं नहीं कर रही, लेकिन हाँ, जो घर जहां से हम आए या पुराने घरों में, गांव के घरों में, वहां पालतू जो पशु होते थे वो भी हमारे घरों में हुआ करते थे। उनमें से कौन आपको प्यारा था, या कोई चिड़िया या कोई पक्षी आपकी दीवारों पर आकर बैठता था? तो आप हमसे जरूर ये बातें ताजा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि हम तो अपने बचपन के दिन हमें याद आ गए, जब हमारे भाई बहन हमें रेडियो सुनने नहीं देते थे और हम सीढ़ी की दीवार से सटकर सुनते थे विविध भारती और पढ़ाई भी करते थे। तब ना ऐसी जरूरत पड़ती थी, न ही फोन होता था और फैन होता था, इन्होंने लिखा, ये पंखा नहीं होता था, और प्राकृतिक हवा जो होती थी, यानी प्रकृति की हवा जो होती थी, वो वही काम करती थी।

श्रोताओं, इस फिल्म को आपको पहचानना है और गीतकार बताने हैं। इस बड़े ही मकबूल गीत के गीतकार का नाम आपको बताना है। आप बता दें तो क्या ही बात है। एक और श्रोता ने लिखा है हमारे कि हमारे जीवन के सबसे मासूम और खूबसूरत दिनों की गवाह होती हैं ये दीवारें। जब बचपन में भाई बहनों के साथ छुपन छुपाई का खेल होता था तो इन्हीं दीवारों के एक कोने या अलमारी के ओट में छुपने की महफूज जगह होती थी। वक्त के साथ आदमी भले बड़े हो जाते, बचपन में जो दीवारों पर बनाई गई आड़ी तिरछी लाइनें, जो लिखावट और कार्टून बनाने की जो नाकाम कोशिश थी, और अपने नाम को लिखने की जिद और माँ पापा की डांट आज भी बहुत याद आती है। ऐसा हमारे इन श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी नानी का घर पहले कच्चे घर रहते थे वैसा था, अब बहुत अच्छा बन गया है और आज भी जब कभी जाते हैं तो आंगन, वो दलान सब याद आती है। नानी के घर की ओर जो बैठक रूम था उसमें जो कि आपने पूछा कि साथ में एक बड़ा सा रेडियो रखा रहता था नाना जी का, और हम सभी बच्चों को कंपलसरी रहता था न्यूज सुनना। तो हम लोग न्यूज सुनने के बाद नकल भी बहुत करते थे। अब आप सुनिए ऐसे मतलब बोलते थे हम लोग, रेडियो खेलते थे तो हम लोग इसी टाइप से खेल खेलते थे, समाचार वाचक बनकर या उद्घोषक बनकर। बड़ा मजा आता था, उन दिनों की आज याद पूरी ताजा हो गई। एक और श्रोता ने लिखा है कि वो दीवारें आज भी याद आती हैं जहां बचपन बीता, वो मिट्टी की दीवार, वो फूस का घर जहां पानी की बूंदें भीगती तो सब भीगा भीगा सा लगता, वो हवा के झोंके, बिजली का चमकना, ऐसा लगता था मानो वो चारों दीवार के अंदर भी डर लगता था। आज सब कुछ बदल गया है मगर कुछ नहीं बदला, तो वो बचपन की यादें, वो मिट्टी का घर बहुत याद आते हैं। दिल यही कहता है कोई लौटा दे बीते हुए दिन। एक और श्रोता ने लिखा है कि इतना रोए थे लिपटकर दरों दीवार से हम, शहर में आके बहुत दिन रहे बीमार से हम।

ये गीता श्रोताओ गंगा मैया तो है प्यारी चढ़े हुए फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में और कुमकुम नजर आती हैं इस गीत में। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत घर और घर की दीवारों के उस पार ले चलने वाली है, सिर्फ पत्थर और सीमेंट से नहीं बनता, इसमें परिवार के हर सदस्य के प्रेम भाव रूपी सीमेंट भी जरूरी है जो हर सदस्य को मजबूती से जोड़े रखती है। उस पर घर के अंदर रेडियो पर जब विविध भारती चल रही हो तब सोने पर सुहागा हो जाता था, रेडियो से जुड़े बचपन की वो दिन जो है वो याद आते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि एक दीवारों में पहले एक स्पेशल स्थान था, बचपन में चौक से पहले जो ड्राइंग निकाली टेढ़ी मेढ़ी वो दीवारों पर निकली, पिताजी मेरे और भाई जो थे वो चित्र निकालते थे हमारे परिवार की बातें इन्होंने लिखी है कि माँ बोलती थी कि दीवार के भी कान होते हैं तो हम बच्चे उनको ढूंढने जाया करते थे और सच में जैसा पुराना घर था वैसे लोग के मन थे, मिट्टी जैसे सुगंधित लेकिन मजबूत, पहले महंगी डेकोरेटिव पीसेस नहीं थी लेकिन दीवारों पर वार्ली पेंटिंग्स दीवार सजाती थी। जी हाँ, वार्ली पेंटिंग्स जो होती है श्रोताओं वो चावल को भिगोकर उसमें जो सफेद लेप होता है उससे बनाई जाती है और काले रंग से भी बनाई जाती है। ये महाराष्ट्र के आउटस्कर्ट्स में होती है जो वार्ली जनजाति द्वारा बनाई जाती है, तो ये बड़ी सुंदर बात इन्होंने लिखी है। आप जो है अगला गीत इसमें कौन से कलाकार हैं वो आपको पहचानने हैं और ये दीवारें आप देखिएगा श्रोताओ मिट्टी से बना ये घर, इनकी कुछ यादें हैं तो आप साझा कीजिए। और हमने आपसे कहा था कि क्या कोई पशु आपने पाल रखा था या क्या कोई पंछी आपकी दीवारों पर आता था या जब आपकी सहेलियों से साथियों से बातें होती थी तो क्या किसी दीवार से लगकर आप घंटों बातें किया करते थे।

आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म ठोकर से बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया। सर्जन दहलवी का लिखा ये गीत था श्याम जी घनश्याम जी की तरह थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन छूटा तो दरों दीवार आंगन घर का वो सामान सब यादों में सिमट गया। पुरानी यादों में खो गए क्या लिखें शब्द कम पड़ जाएंगे। खूबसूरत समय यादों में बसा है जिसे अकेले में बैठकर तस्वीरों से साझा करते हैं। दिल को आज भी उन्हीं लम्हों की याद आती है उन्हें खोजता है ये दिल। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं श्रोताओं। और जो घर की यादें होती हैं घर की बातें होती हैं वो बड़ी ही आलीशान होती हैं। क्या इन घरों की मरम्मत इन दीवारों की मरम्मत आपको जरूरी लगती है जहां कभी गुड्डे गुड़ियों का खेल खेला था। ऐसी यादें ऐसी बातें भी आप हमसे जरूर साझा कीजिए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ श्रोताओं कि किसी घर के सामने आप पहुंचे जिस घर में आपको जाना था लेकिन उस घर के सामने आकर भी आप उस घर को पहचान नहीं पा रहे हैं या फिर किसी ने आपको भटका दिया कि ये वो घर नहीं है और उस घर को बाद में आपने दीवार से पहचाना। ऐसा कुछ गुंजा यानी साधना सिंह की जो फिल्म आई थी नदिया के पार इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि वो अपने ही घर का पता सचिन को नहीं बताती हैं। आपको फिलहाल ये कलाकार बताने हैं जो इस गीत में हैं।

एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे बचपन के वो दिन याद हैं जब कितनी मेहनत से हमारे पिताजी ने जमीन लेकर चार दीवार तो खड़ी की पर उस पर छत डालने में कितना कष्ट उठाया। उनका स्वास्थ्य, उनके पास धन की तंगी, सब मिलकर एक घर बड़ी मुश्किल से बनता है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा।

संजीव कुमार और रीटा हक्सर पर फिल्माया गया सूरज और चंदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आपने श्रोताओ, मुझे तो वो नहीं मिला कमेंट, हमने आपसे पूछा था कि क्या कोई घर ऐसा था जिसे आप ढूंढने गए लेकिन उसके सामने ही खड़े होकर भी आपको पता नहीं चला कि ये घर वही है जहां आपको जाना है। वैसे हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा कमेंट लिखा है, लिखते हैं कि हाँ, मैंने पहले एक मुर्गा पाल रखा था जब मैं बचपन में था तो मेरी उम्र अब शायद लिखते होंगे या पहले के 38 साल के हो चुकी है, मैं शायद पहले दूसरी कक्षा में पढ़ता था। मैंने एक मुर्गा पाल रखा था, उसका नाम मैंने चित्र रखा था और वो जहां भी मैं जाता था मेरे साथ ही जाता था कुट कुट करता हुआ। एक बार मेरे चाचा के यहाँ बैल बंधे हुए थे ऐसा इन्होंने लिखा होगा शायद, और वहीं पर जाता था बार बार तो कुछ तो बिखेर देता था वहां पर, तो चाचा ने मुर्गी को मार डाला तो मैं कम से कम 2 दिन तक रोटी नहीं खाया। इन्होंने जब बहुत माँ बाप ने समझाया तब जाकर मैंने सोचा कि छोड़ो।

बीना रॉय और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ताजमहल फिल्म का ये खूबसूरत नगमा आप सुन रहे थे। श्रोताओ, तो कुछ न कुछ वादा तो आपने भी अपने घरों की दरों दीवारों से जरूर किया होगा, उनको दुरुस्त करने का और ये वादा कि वहां लौटकर फिर से आने का। तो आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम सुरीला सफर यहीं संपन्न होता है। आप रहिए रेडियो विविध भारती के संग।

श्रोताओ नमस्कार, आपके रेडियो सेट पर आ चुका है आप ही के मनचाहे गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। आज इस प्रोग्राम में कौन कौन से गीत शामिल हैं और किन श्रोताओं की फरमाइशें शामिल हैं, इन बातों के लिए चलिए मन चाहे गीत कार्यक्रम के सफर में चलें हम और आप साथ साथ बनाकर आपके मन चाहे गीतों को अपना हम सफर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे थे चरस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। विनय अवस्थी ने इस गीत को पसंद किया, पालमपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के ये हमारे श्रोता हैं। और इसी गीत की फरमाइश की अम्बाला कैंट हरियाणा से रतनलाल, विनोद कुमार, साहिल, सुदेश और मनीषा ने इस गीत को सुनना चाहते थे। काशी निवास बंगाली पंजाब महाराष्ट्र के हमारे श्रोता प्रकाश रंभांडे, भारती रंभांडे, नागपुर के श्रोता टोनी बोरकर, ललिता बोरकर की ये फरमाइश थी। रामनगर जिला गुना के हमारे श्रोता ज्योति प्रजापति, नरेश प्रजापति, सार्थक प्रजापति और पालदानाका इंदौर के हमारे श्रोता हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी की फरमाइश हमने आपको सुनवाई। और इसी गीत को सुनना चाहते थे घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मित पंचोलिया।

रूप तेरा मस्ताना फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर किशोर कुमार का गाया, असद भोपाली के बोलों को सुर में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुना चाहते थे बड़ोड़ा करेली बाग के हमारे श्रोता दिव्य हर्ष, राधे, पारस पूजा, रचना और इनके परिवार के सभी सदस्य, कटोल जिला नागपुर से सुरेश मलमकर, श्रीमती रजनी मलमकर की ये फरमाइश थी। और रेलवे कॉलोनी डी ब्लॉक आनंद विहार के हमारे

श्रोता कृष्ण वंजानी, नीलम वंजानी, स्वाति और कीशु वंजानी की ये फरमाइश थी। और ये हमारे श्रोता हैं इंदौर आड़ा बाजार के प्रतिभा पंचारे बबलू जिया राशि, नेहा मनीष शर्मा और भावना के साथ साथ एक और नाम है आशीष जाधव का। और ये हमारे श्रोता हैं आरुष आर कम्मत, इन्होंने कोची केरल से ये फरमाइश भेजी थी।

कि हमारे श्रोता सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा, पूजा वर्मा ने इस गीत को पसंद किया। दत्तारेंगी भाटापारा से हीरामन वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र चिंतामणि और नोखेलाल वर्मा की फरमाइश थी। प्रबोध चंद्र कंडपाल, रेणु कंडपाल, अंजलि कंडपाल की ये फरमाइश आई इंदौर से। और गजवाटांड धनबाद से हमारे श्रोता हैं शाहीन बानो, समीना बानो, नाजिया और सायका बानो, और इसी गीत को सुनना चाहते थे। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र के हमारे श्रोता सिद्धार्थ गुंडा ने, अर्चना गुंडा ने और इनके प्रतिभा पद्माकर गुंडा ने और इनके परिवार के सभी सदस्य पगला कहीं का इस फिल्म का गीत इन्होंने सुनना चाहा था। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आपने सुना। नगमा निगार हसरत जयपुरी, मौसकार शंकर जयकिशन थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में आंखें फिल्म का गीत, साहिल लुधियानवी का लिखा, रवि का संगीत था। अनारकली बाजार जगराओ के हमारे श्रोताओं ने इस गीत को पसंद किया। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और सुच्चा सिंह पाठक ने इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे। नाचन गांव, जिला वर्धा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से आरती भगत, वैशाली पूर्वी भगत, लता प्रदीप, विशाल भगत ने इस गीत को पसंद किया और इनके साथ ही रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश। अकोले संगम विहार दिल्ली के हमारे श्रोता हैं रणधीर गुप्ता, बबिता सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता, राजकुमार भगवती, शकुंतला और ये हमारे श्रोता हैं, इन्होंने रामनगर जबलपुर मध्य प्रदेश से फरमाइश भेजी है। भगवान दास, सियाबाई, राजकुमार और दिनेश कुमार की ये फरमाइश है और ये ही नाम इसमें है। और लेक सिटी उदयपुर के हमारे श्रोता प्रकाश चंद्र, अमिता, इंदिरा देवी, शैलेन्द्र बाबू, अरुचि और नेहा अमेटा ने इस गीत को सुनना चाहा था और यही थी श्रोताओं मन चाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज का मन चाहे गीत प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। आप रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग और मन चाहे गीत में अपना साथ बनाए रखिए। भेजते रहिए अपने पत्र। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग, आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं असद जैदी का लिखा नाटक वायलिन वादक। निर्देशक हैं मदन शर्मा।
1: मैं सूत्रधार हूं और इस नाटक में बीच बीच में इसी तरह टपकता रहूंगा।
2: जिंदगी के इस नाटक को समझना आसान नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं अपनी मर्जी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं चाहता हूं घटनाओं पर मेरा स्वामित्व हो। मैं चाहता हूं बस मैं यही चाहता हूं कि मैं कुछ चाहता हूं। क्या कुछ पता नहीं।
3: अनाम भैया, वॉलन सुनाओ ना।
4: हाँ, जरूर सुनाऊंगा रितु, अभी सुनाता हूँ।

0: भैया?
1: पूछो।
0: ये वायलिन तुम कहाँ से लाए?
1: ये वायलिन, ये वायलिन।
2: बेटे अनाव, कहाँ जा रहे हो?
1: बाजार।

0: अरे कुछ पहन कर नहीं जाओगे? बाहर बहुत सर्दी है।
1: अरे माँ कुछ नहीं होगा।
0: लो अपना गला अच्छी तरह ढक लो। ये कोट के बटन भी तो बंद कर लो, सर्दी तेज है।
1: अरे माँ।
0: अरे हाँ बेटे, आज तुम्हारा जन्मदिन है, क्या लाऊं तुम्हारे लिए?
1: अरे माँ पैसे कहाँ है तुम्हारे पास?
0: है, इस महीने की तनख्वाह में से बचा कर रखे थे।
1: तब तो जो मर्जी आए ले आना।
0: मैं तेरे लिए वायलिन लाऊंगी। मैंने आज मिस्टर बत्रा से पूछा था, उन्होंने कहा कि बेटे के लिए वायलिन खरीदो। मैंने उन्हें तुम्हारी रुचियां बताई थी।
1: माँ ये मिस्टर बत्रा कौन है?
0: हमारे स्कूल में नए टीचर आए हैं, हिंदी पढ़ाते हैं और नाटक खेलते हैं।
2: ये थी अनाम की 18वीं सालगिरह। माँ के दिए हुए वायलिन को उसने सीखना शुरू कर दिया। उसे लगा वायलिन के रूप में उसे जिंदगी की नई खुशी मिल गई है। अनाम का कॉलेज सुबह का था और माँ जिस स्कूल में पढ़ाती थी वो शाम का था। अनाम कॉलेज से घर लौटता, माँ के हाथ से खाना खाता। जब माँ स्कूल चली जाती थी तो अनाम का वक्त काटना मुश्किल हो जाता। वायलिन आने पर उसका वक्त आसानी से गुजरने लगा। एक दिन की घटना है।
0: अनाम बेटे, तुम्हारे कॉलेज के नाटक का क्या हुआ?
1: अच्छा गया माँ।
0: तेरा रोल तो अच्छा रहा ना?
1: बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं स्टेज के पीछे रो दिया था।
0: क्यों?
1: माँ वो मैं श्रवण कुमार बना था। जब राजा दशरथ अंधेरे में पानी भरते हुए श्रवण कुमार को तीर मार देता है
0: तो क्या
1: मेरा रोल खत्म हो गया। मैं रोल खत्म होने पर स्टेज के पीछे खड़ा हो गया, मगर रोल सर से उतरा नहीं था। जैसे ही श्रवण कुमार के माँ बाप ने रोना शुरू किया मेरे भी आंसू आ गए। सच मुझे तुम याद आ गई माँ।
0: बेटे तुम बहुत भावुक हो, बहुत भावुक।
2: यही था वो अनाम जो जीवन के 18 बसंत गुजार कर भी बच्चा ही बना हुआ था। माँ उसका संसार थी, उसकी सारी चीजें माँ के इर्द गिर्द केंद्रित थीं। क्योंकि जब से उसने होश संभाला तभी से उसके लिए सिर्फ माँ थी। पिता सड़क दुर्घटना में मारे गए थे, इसलिए अनाम की माँ को स्कूल में नौकरी करके वैधव्य के लंबे दिन गुजारने पड़े। एक दिन की बात है।
0: अनाम, अनाम।
1: क्या बात है माँ?
0: अनाम, मिस्टर बत्रा ने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हें अपने नाटक में लेना चाहते हैं।
1: लेकिन माँ वो तो मुझे जानते ही नहीं।
0: जानते हैं। मैं तुम्हारे बारे में उनसे बात किया करती हूँ।
1: अब ठीक है माँ, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा।
0: नहीं, अकेले ही जाना।
1: क्यों?
0: मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा।
1: मगर क्यों माँ?
0: वो तुमसे अलग से बात करेंगे, मेरे साथ चलने से क्या होगा? आखिर रोल तो तुम्ही को करना है। आ गए तुम?
1: अच्छा नहीं रामा।
0: क्यों?
1: वो उन्होंने नाटक के बारे में तो कोई बात ही नहीं की, बस मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते रहे, रुचियों के बारे में पूछा, मेरे दोस्तों साथियों की बात, आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हो, बस ऐसी ही बातें।
0: ठीक तो है, वो तुम्हें समझना चाहते होंगे, तुम्हारे बारे में जानना चाहते होंगे।
1: मुझे तो वो पसंद नहीं आए माँ।
0: क्यों?
1: बस कुछ आदमी पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते।
0: ये बचपना छोड़ो अनाम, इस तरह नहीं कहा करते, मिस्टर बत्रा बहुत अच्छे आदमी हैं।
1: होंगे मगर।
0: अनाम।
1: माँ इसमें नाराज होने की क्या बात है? ठीक है माँ, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें दुख होगा। तुम चाहोगी तो मैं उनके नाटक में काम करूंगा। आज उन्होंने मुझे कुछ ऐसी नजर से देखा कि मैं बहुत परेशान हो गया, बस इतनी सी बात थी।
0: अनाम अब तुम जवान हो, समझदार हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
1: मुझे दुख है माँ।
2: मिस्टर बत्रा के बारे में अनाम की बात सुनते ही माँ कितनी विचलित हो गई। माँ की वो संदेह भरी नजर, चेहरे पर अचानक चौंकने का ये भाव, नाराजगी भरी आंखें,

0: अनाम को पहली बार माँ के साथ ये तजुर्बा हुआ। इस तजुर्बे से अनाम को धक्का लगा। मिस्टर बत्रा से मिलना अनाम को अच्छा नहीं लगा और अनाम सोच भी नहीं पाया कि माँ को इससे दुख होगा। मिस्टर बत्रा के शुरू किए गए नाटक सुंदरता के सभी शिकारी में अनाम ने काम करना शुरू कर दिया। रिहर्सल होने लगी। रिहर्सलों के दौरान माँ मौजूद रहती। वो लगातार मिस्टर बत्रा से पूछती रहती,
1: कहिए बत्रा साहब, अनाम ठीक चल रहा है ना? एक्टिंग तो ठीक करता है। बस बस बस यही कसर है, मगर सुधार तो लेगा ना? हाँ, मुझे भी डर था, मगर अब ठीक है। बस बस बस ज्यादा तारीफ मत करिए। आप उसे खुश तो है ना? बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा साहब, सो काइंड ऑफ यू। प्लीज प्लीज बत्रा साहब, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे नहीं होगा।

0: कुछ तुम भी कह सकते हैं। सच तो ये है कि एक औरत के अकेलेपन के दिन कैसे होते हैं मैं ही जानती हूँ। मैं अब खुश रहने की कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी।
1: अब तो आप जान ही गए होंगे प्रिय श्रोतागणों कि नाटक एक नहीं दो चल रहे थे। एक नाटक का नाम सुंदरता के सभी शिकारी और दूसरा नाटक ऐसा था जो जिंदगी के वास्तविक रंगमंच पर खेला जा रहा था, मिस्टर बत्रा और अनाम की मां के बीच, जिसमें अनाम भी था। इस दूसरे मगर अदृश्य नाटक में फंसे अपने तीनों पात्र कुछ अरसे तक अपनी अपनी दिशाओं में चलते रहे और अपने अपने अंतर्द्वंद्वों का शिकार होते रहे। अब ये जानना कतई जरूरी नहीं कि कब क्या कैसे हुआ, मगर एक दिन अनाम ने मां से कह दिया कि आगे से वो रिहर्सलों में ना आए।
0: आखिर क्यों?
2: अच्छा नहीं लगता माँ, बत्रा साहब अच्छे डायरेक्टर।
0: अच्छे डायरेक्टर वे चाहे ना हो, वो अच्छे आदमी जरूर है अनाम।
2: नहीं माँ, मेरा मतलब उनकी बुराई से नहीं था, मगर तुम रोज रोज रिहर्सल में बैठी रहती हो, ये अच्छा नहीं लगता।
0: देखो अनाम, तुम अपने मन से उल्टी सीधी बातें निकालकर फेंक दो।
2: बुरा मत मानो माँ, मैं तो ना समझ हूँ, बच्चा हूँ, मगर माँ मेरे लिए संसार का अर्थ ही माँ है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता माँ, तुम्हें खो देने का मतलब होगा संसार को खो देना।
1: और माँ अनाम की कल्पनाओं के अंधेरे में हवा के उजले झरोखे सी माँ अपनी उलझने लिए मिस्टर बत्रा के पास पहुंची।
0: अनाम ने कभी मुझसे अपने आप को काट कर नहीं देखा, बचपन से ही उसके साथ सिर्फ मैं रही हूँ, मेरे साथ उसके विचार चले हैं। मिस्टर बत्रा, अनाम नादान है, लड़कपन से आगे वो निकल नहीं पाया है। ये पहली बार हुआ है कि उसने मेरी बात की अवहेलना की और मेरे रोकते रोकते आप पर अपने नापसंदगी की मोहर लगा दी है। कुछ कहिए मिस्टर बत्रा, चुप बताइए।
1: क्या कहते श्री बत्रा या कोई और? जिंदगी का अकेलापन कहीं तो 20-20 साल तक आपको नहीं खाता, और जब खाने लगता है तो एक दिन भी उसकी पूरी गिरफ्त में आने के लिए काफी है। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए और तसल्ली से बत्रा साहब से बातें कीजिए, जिनकी जिंदगी के 40 बरस कोरे गए, वे अब एहसास की तहरीरें देख रहे हैं। दूर समंदर में उठती किनारे की रोशनियों से जगमगाती लहरों की तरह उनके अंदर विचारों का उठाव है। द्वंद्व में सिर्फ आप ही नहीं हैं।

0: माँ कहती खाना खा, अनाम आता, खाना खाता। माँ कहती वायलिन न बजा, जा बिस्तर में जा, जाकर सो जा।
1: अनाम खाना खा, चल घर चल, जा बाजा बजा, बाजा बजा, जाकर सो सो जा, चल उठ उठकर हाथ मुंह धो, हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर, चल उठ चल, नाटक कर
0: कर,
1: नाटक कर,
0: अच्छा
1: अभिनय कर, चल तू उत्सव तू हंस खुलकर हंस, बाजा बजा वायलिन बजा, बस बंद कर अब बंद कर, चल कहना मान आज्ञा मत डाल, खुश रह आंसू मत दे, खुलकर रो खुलकर रो खुलकर रो।
2: बच्चा बहुत अच्छा आदमी है, बच्चा बहुत अच्छा आदमी है, मुझे बच्चा बहुत अच्छा है। नहीं, अकेले ही जाना, मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा, मेरे साथ चलने से क्या होगा, मैं तेरे लिए कॉल नहीं आई। मैंने आज मिस्टर बच्चा से पूछा था, उन्होंने कहा
3: अनाम
2: के लिए कॉल नहीं आई।
3: अनाम अनाम, क्या हुआ बेटे, क्या तुम डर गए थे? सपनों डरो मत बेटा, डरो मत।
4: हाँ माँ, सपना था, सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना।

0: बस ऋतु
1: और बजाओ ना नाम बजाओ।
0: बस ऋतु अब कल।
2: अच्छा अनाम भैया आपकी मम्मी कहाँ गई?
0: मेरी मम्मी पता नहीं ऋतु मेरी मम्मी कहाँ गई। तुम्हारी मम्मी तो है ना?
2: मेरी मम्मी घर पर है, आपको मेरी मम्मी के पास ले चलूं?
0: नहीं ऋतु।
2: क्यों?
0: वो मुझे मेरी मम्मी याद आ जाएंगी।
1: अच्छा नाम भैया मैं चलती हूँ।
3: अनाम ये वायलिन बंद करो, पहले मेरी बात सुनो।
0: सुन रहा हूँ।
3: मेरी बात टालोगे तो नहीं?
0: क्या बात?
3: इतने ठंडे सुर में क्यों बोलने लगे हो तुम अनाम? बेटे मैं मिस्टर बत्रा से शादी कर रही हूँ। तुम्हारी क्या राय है?
0: मेरी राय कैसी?
3: तुम्हें दुख है?
0: कोई दुख नहीं, अच्छी बात है।
3: मेरी मर्जी पर चलोगे नहीं?
0: किसने कहा?
4: अनाम की मां अब मिसेस बत्रा हो जाती हैं। अब सिचुएशन यह है कि अनाम महोदय बेचैन हैं। घर पर ताला लगाकर वे अपनी मां के साथ अपने नए पिता के घर आ गए हैं। उनका मन बैरागी हो गया है।
3: अनाम दिन भर से कहां गायब थे?
0: बाहर था।
3: बाहर से मतलब? मैं पूछ रही हूँ कहाँ गायब थे?
0: शहर में घूम रहा था।
3: देखो अनाम ये वायलिन उठाकर दिन दिन भर आवारा गर्दी करना, किसी से बोलना ना चालना, पढ़ाई में मन ना लगाना।
0: बस करो माँ।
3: तुम्हारे पिता कह रहे थे तुम आज रिहर्सल में भी नहीं आए, ये सब कब तक चलेगा आखिर?
0: ठीक है।
3: क्या ठीक है?
0: आगे से ख्याल रखूंगा।
3: कहाँ जा रहे हो?
0: सोने के लिए।
3: खाना तो खा लो।
0: भूख नहीं है।
3: ठीक है जाओ।
0: ये चिड़चिड़ापन तुम में क्यों माँ? ये असहिष्णुता मुझ में क्यों?

मैं घटनाओं से समझौता नहीं कर पा रहा हूं। आखिर क्यों ये सूनापन क्यों घिराया है? अपनी मां को खोकर मुझे ऐसा क्यों लगने लगा जैसे मेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह गया है? मैं इतना पराश्रय क्यों हूं? मैं तुमसे अपने आप को अलग क्यों नहीं कर पाता मां?

0: मां को मां कहना अनाम ने बंद कर दिया है। वो उसे मिसेज बत्रा कहकर पुकारता है अगर जरूरत होती है तो। एक अनजान बच्ची को वो वायलिन सुनाता रहता है। और एक संसार था मां का।
1: अनाम खोया खोया रहता है, उदास और मूछिल। वो इस घर में नहीं रहना चाहता, उसे पुराने घर की स्मृतियां सताती हैं। वो वही लौट जाना चाहता है। दिन दिन भर आवारा करती वायलिन और पड़ोस की बच्ची रितु। आप ही बताइए मैं क्या करूं, कैसे संभालूं इसे।
2: मिस्टर बत्रा, चुप क्यों हैं? कुछ कहिए ना, हमारे श्रोता आपकी वाणी सुनने को तरस रहे हैं।
1: अब मैं और नहीं सह सकती। कब तक ये अनिश्चय, आखिर कब तक? मैं किसी की जंजीर से नहीं बंधी हूँ, चाहे बेटा हो। उसकी भावुकता और बचकानेपन पर अपनी बलि मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी।
0: जी हाँ जी हाँ, बलि ना होने दें। ये फैसला आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद।
1: आपको पता है अनाम घर छोड़ के चला गया। कल रात को यह नहीं आया। स्कूल का एक लड़का बता रहा था कि पुराने घर में अकेला बैठा वायलिन बजाता रहता है। बहुत दिन हो गए अनाम को यहां से गए हुए। एक बार का ऐसा गया कि फिर इस ओर झांक कर भी नहीं देखा। उसकी खबर मिलती रहती है। मैं बेचैन हूं। पता चला है अनाम ने नौकरी कर ली है, पास हो गया है।
2: कितने आश्चर्य की बात है कि मिनट घंटे पहर और दिन गुजारना मुश्किल लगता है। प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिन ऊब उकताहट और बोरियत हमें खाए लेती है। अनाम को यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो 20 बरस का हो गया है। मां से जुदाई के 2 वर्ष पल पल सदियों की तरह कटा, मगर ये सदियां कब मिलकर 2 साल बन गईं पता ही ना चला। है ना आश्चर्य की बात।
3: वायलिन के साथ गुजारे गए 2 साल बचपन के सुनहरे दिन, कैशोर के बदलाव के रंग से दिन।
0: मिस्टर अनाम,
3: पता नहीं कौन निरंतर मुझे आवाज देता है।
0: मिस्टर अनाम,
3: बार बार खटखटाहट होती है, बार बार मैं जागता हूं, बार बार फिर खटखटाहट होती है। इसका रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। महीनों हो गए, मां की कोई याद नहीं। 2-1 बार मिलने भी आई, मैंने मिलने से इनकार कर दिया। पता नहीं अच्छा किया या बुरा। घटनाएं अब सिर्फ एक धुंधली सी स्मृति बनकर रह गई हैं। न किसी के प्रति प्रेम उमड़ता, न नफरत। ये मुझे क्या हो रहा है धीरे धीरे।

0: अनाम एक दिन मेरा अपमान करेगा, मैं उससे मिलने जाऊंगी और वो मुझसे मिलने से इनकार कर देगा। ओह, ये कभी सोचा तक न था। मगर क्या करूं, उसको अपने से हटा नहीं सकती। मैं उतनी क्रूर और कठोर नहीं बन सकती, नहीं बन सकती।
1: अनाम ने मातृत्व ढूंढा था, वो माँ के दूसरे किसी पक्ष की कल्पना भी नहीं कर पाया था।
0: मातृत्व वैधव्य के लंबे दिन गुजारने से ही सार्थक नहीं होता अनाम।
2: ये तुम्हारी भूल है माँ, तुम मुझे समझ नहीं सकी।
3: कैसी भूल और किसकी भूल? जीवन के इन पेचीदा प्रश्नों का उत्तर किसके पास है?
0: कहाँ है उत्तर?
3: कहाँ है उत्तर?
2: कहाँ है उत्तर?
0: कहाँ है उत्तर?
3: कहाँ है उत्तर?
4: अनाम भैया।
2: हाँ रितु।
4: वायलिन सुनाओ ना।
2: रितु, आज समुद्र के किनारे चलते हैं, वहां जाकर खूब वायलिन बजाएंगे, है ना?
4: हाँ हाँ चलो।

सारे शहर में खबर फैल गई कि समंदर के किनारे चट्टान पर बैठकर एक लड़का पिछले 12 घंटों से वायलिन बजा रहा है। बहुत सारे लोग उसे देखने जा रहे हैं, बहुत भीड़ है। यह भी सुना गया है कि एक 10 वर्षीय बच्ची निरंतर 12 घंटों से वायलिन वादक के साथ बैठी वायलिन सुन रही है।

0: वायलिन बजा रहा है। रितु के मामा भी परेशान हैं, वो भी उसी के साथ हैं।
1: विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि युवा वायलिन वादक जो पिछले 20 घंटों से लगातार वायलिन बजा रहा है, उसका नाम अनाम पाठक है। कुछ लोगों का अनुमान है कि संभवतः वो लगातार वायलिन बजाने में विश्व रिकॉर्ड कायम करना चाहता है। एक अन्य सूचना के अनुसार पुलिस थाने में एक बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बच्ची के मां-बाप ने किसी अनाम पाठक के प्रति संदेह व्यक्त किया है। विश्वास किया जाता है कि ये युवक संभवतः वही युवा वायलिन वादक है और ऋतु नामक जिस बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, ये वही बच्ची है जो उक्त वायलिन वादक को पिछले 21 घंटों से सुन रही है।
2: अनाम भैया को वायलिन बजाते बजाते रात हो गई।

प्राप्त समाचारों के अनुसार एक युवा वायलिन वादक जिसका नाम अनाम पाठक बताया जाता है आज समुद्र के किनारे मृत पाया गया। संभवतः उसने आत्महत्या की है। इस आत्महत्या के पीछे दो दिन पूर्व की उस घटना का हाथ बताया जाता है जब उस युवक ने लगातार 25 घंटे तक बिना रुके वायलिन बजाकर पूरे शहर को चकित कर दिया था। बाद में युवक की मां ने उसके हाथ से वायलिन छीनकर तोड़ दिया था। मृत युवक अत्यधिक संवेदनशील और प्रतिभाशाली था, मगर एक चिकित्सक के अनुसार कुछ मानसिक व्याधियों से ग्रस्त था वो वायलिन वादक।

0: वायलिन वादक, नाट्य तरंग में अभी आप असद जैदी का लिखा यह नाटक सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया मदन शर्मा ने। यह रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी के जयपुर केंद्र के सौजन्य से। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।